उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। साधारण सभा हुने मिति 2083 भदौ 6 गते शनिबार, समय बिहान 11 बजे, स्थान टिगापुर योग आश्रम हल, ब्लक नम्बर 18, टिगापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था कैलाली।

0: किंगलीचे सर लागू हुई एंसेल नेपाल के लग
1: धरोहर थारवान आंदोलन का वीर शहीद अमर रहुन समानता न्याय अधिकार का लागी एवं दासता विरुद्ध टीकापुर धरोहर थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष
2: आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के
1: टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 में सहभागी बनो मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे टीकापुरको भानुचोकको खुल्ला मैदानमा आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली ओइ दीपा दीपा टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ नै जाइठो का
3: ए हो तो टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ जाइक लग मै तो कबसे तयार बाटु टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मई किल कहाँ मई तो ढेवरे संगरे हूँ कहा लैके जाइक लग बाटू जे तू नाई जाइ ठोका
1: मई फे जाइ तू मई फे तो हार यहाँ ढेवरे संगरे लेके जाइ तू
3: ले तो ले सबको जाने वहाँ भेट अपना ओ कार्यक्रम ही सफल बना हम भी तो जाइ थी अपने हुक्रे फैन जरूर रही बिना यह भाद्रा 7 गटे
4: छिच्छी कस्तो गनाएको इनका सन्तानले टोयलेट गनाएरै मार्ने भए
5: फेरि छिमेकीको गाली पाइने भयो के गर्ने होला घरमा पुरुष पनि छैनन्
6: ए दिदी पनि कति डराउनु भएको कोही चाहिँदैन फोन गरेपछि तुरुन्तै सेवा उपलब्ध गराउने आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसबै सेवा छँदैछ नि
4: कता छ त त्यो
6: जता भए पनि फोन गर्नुहोस् न तुरुन्त आइहाल्छ नि
4: फोन नम्बर कति हो भाइ
6: आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवाको सम्पर्क नम्बर 97620-20300 हो अर्को पनि छ 98-65-69-20-26
4: तपाईँको पनि टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सप्पी राजापुर गेरुवा र लम्कीमा सेफ्टी ट्याङ्की गोबर ग्यास र रिङवाला टोयलेट सरसफाई गर्नु परेमा आदित्य सेफ्टी ट्याङ्की सरसफाई सेवालाई सम्झिनुहोला सञ्चालक शेरबहादुर थारू सम्पर्क नम्बर 97620-20300 र 98-656-92-026
7: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना
3: भजनी नगर पालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले कोर से स्वास्थ्य सेवा लेना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हुके मौका के फायदा ले से भी
7: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हु
3: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा
7: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा
3: जनरल फिजिशियन सेवा
7: जनरल सर्जरी सेवा
3: शिविर होइना मिति 2083 भाद्र 7 गते आइतबार
7: स्थान महुन्याल मावि भजनी कैलाली
3: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम
7: भजनी नगरपालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कैलाली
8: भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टीकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका

0: दाइ बेड्डो भूक लाग्ता खाजा बाँकी नै ए काकी फे आइल बाटी राम राम काकी
1: राम राम हो नानी मजा बाटो ऐसनले छाइट भारी होस याकल बाजे आप भली भुआस कर दिए परल है समय में भुआस कर देल से आपन जिम्मेवारी फे वरिना और जनक बात फे सुननी पर्ना
2: आ दीदी फे ऊ बेला आपन कटरा पहना इच्छा रह छुट्टी में भुआस कर देख मुआ दाई बाबा कर लग गलती जस्ता फिर डोरे नी चाहू दीदी मई चाह ई बाल विवाह कर नी चाहू ई बाल विवाह नी करन दीदी
3: शारीरिक मानसिक रूप में सक्षम नहीं होकर किशोरावस्था में जो छाइक भुआस कई देना से दाई वो बच्चा दोनों के स्वास्थ्य खतरा में पड़ सकत ऊ हिंसा के शिकार बन सकत वही है विद्यालय छोड़ पड़ना बाध्यता हुई सकती ऊ रोजगार फिर नहीं पाए ओ गरीबी में बाँच बाध्य हुई पड़थिन नेपाल के कानून अनुसार 20 वर्ष नहीं पुगे भुआस कराई नहीं हुई असिन करैल से 3 वर्ष सम कैद वो 30,000 रुपया सम जरिमाना हुई सकत ओ असिन भुआस कानूनी मान्यता
1: टीकापुर नगर पालिका वडा नंबर 3 से देगिलक जनहित में जारी संदेश
4: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी संग सहकार्य गरौ
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
1: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
1: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854 89213 इमेल ocmctikapur@gmail.com
7: टीकापुर नगरपालिका 1 नम्बर वडा कार्यालयको वडावासी नगरवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध
8: जन्मदर्ता विवाह दर्ता बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद तथा मृत्यु दर्ता लगायतका घटना भएको 35 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा वडा कार्यालयमा दर्ता गरौं
7: कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अघि वडा कार्यालयमा दर्ता गराएर मात्रै सञ्चालन गरौं व्यवसाय दर्ता नगरेको भए तत्काल दर्ता गरिहालौं
8: ढल वा सड़कमा व्यवसाय नगरौं सार्वजनिक स्थलमा ढुङ्गा माटो बालुवा गिट्टी जस्ता निर्माण सामग्री नथुपारौं
7: घर वा पसलबाट निस्किएको फोहोर मैला जथाभावी नफालौं चौपायालाई छाडा नछोडौं सड़क छेउमा नबाधौं
8: एक घर 3 बिरुवा अनिवार्य रोपौं सबै प्रकारका करहरू समयमै भुक्तानी गर्नु दायित्व हो
7: आफ्नो नगर सफा सुन्दर बनाउन आआफ्ना ठाउँबाट लागौं
8: वडा कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुझाव र गुनासो भए वडाको फोन नम्बर 091-560-877 र वडा अध्यक्षको फोन नम्बर 98-48-44-598 सम्पर्क गर्नुहोला
7: 1 नम्बर वडा कार्यालय टीकापुर नगरपालिका
9: एनसेल प्याक किन्नु भयो त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल प्याक किन्नु भयो त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: कबू कापी रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटा का आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहा था।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चेक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जेबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ल झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: बाबू ए बाबू, कल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
4: मैं नहीं जाए, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
4: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब ही जाए।
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
6: उपभोक्ता वर्गमा टीकापुर नगरपालिकाको अनुरोध, आफूलाई आवश्यक औषधि, खाद्यान्न, पेय पदार्थ र अन्य सामानहरू खरिद गर्दा उपभोग्य मिति, मूल्य सूची, लेबल आदि हेरेर मात्र खरिद गरौं। आफूले खरिद गर्न लागेको सामानको उत्पादन, भण्डारण वा बिक्री स्थलमा आवश्यक सरसफाई छ छैन हेरेर मात्र खरिद गरौं।
7: जोखेर लिनुपर्ने सामानहरू खरिद गर्नु अघि ढक तराजुको अवस्था ठिक छ छैन हेरौं।
6: वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा बिल बिजक लिने बानी बसालौं।
7: सामानको उपभोग्य अवधि सकिएको भए वा पानीले भिजेको, प्याकिङ सामानको प्याकेट फुटेको, ओसिएको वा गुणस्तरहीन भए त्यस्तो सामान खरिद नगरौं।
6: अखाद्य रंग वा मापदण्ड विपरीतका वस्तुहरूको मिसावट भएका खाद्य तथा पेय पदार्थहरू खरिद नगरौं।
7: लेबल नभएको वा लेबलमा उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तुको ब्याज नम्बर, तौल, अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य उल्लेख नभएको प्याकिङ सामानहरू खरिद नगरौं।
6: साथै उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति नभएको वा केरमेट भएको वा पुनः लेबलिङ गरेको वस्तु समेत प्रयोग नगरौं।
7: आफ्नो इच्छा अनुसार रोजेर माल सामान वा सेवा खरिद गर्न पाउने, खरिद गर्दा मूल्यमा मोल मोलाई गर्न पाउने र आफूले खरिद गरेको सामानमा कुनै त्रुटि भए तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो।
6: खरिद गरेको माल सामान र सेवाको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्य वा जीवधनमा कुनै प्रकारको हानि नोक्सानी हुन गएमा सम्बन्धित विक्रेताबाट कानून मजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकिने उपभोक्ताको अधिकार हो।
7: उपभोक्ता अधिकारको बारेमा आफू पनि सचेत बनौ र अरूलाई पनि सचेत बनाऊ।
6: कुनै वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव वा उपभोक्ता हित विपरीतका अन्य कुनै अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापहरू भए गरेको थाहा पाएमा तुरन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, ओडा कार्यालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि वा टीकापुर नगरपालिकाको फोन नम्बर 091-560-384, 091-560-118 र उपभोक्ता हित संरक्षण उपशाखाको मोबाइल नम्बर 98-48-43-35-83 जानकारी गराउन हुन अनुरोध छ।
7: बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति टीकापुर नगरपालिका।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टीकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: भदौ 6 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
8: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौँ नजम्ने, तालुको रौँ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: डाक्टर आउने दिन भदौ 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 98688008 र 98253677272।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां क्रम स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सुदूरपश्चिम में सर्पदंश के उपचार के लग प्रयोग होना एंटी स्नेक भेनम के अभाव हुके औषधि अभाव से उपचार में समस्या हुई थी। कैलाली में जापानीज इंसेफ्लाइटिस से 7 जने संक्रमित। लामखुट्टे से टोकाई से बचना उपाय लगाई पर्ना में जोड़। टीकापुर में 90 पिंट रगत संकलन। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजोग प्रशिक्षण केन्द्र टीकापुर में 7 गते रक्तदान कार्यक्रम आयोजना करना। सार्वजनिक सेवा प्रवाह में चुस्त बनीना मुख्यमंत्री भत्ता के निर्देशन। सुदूरपश्चिम प्रदेश में सर्पदंश के उपचार के लग प्रयोग होना एंटी स्नेक भेनम अर्थात विष विरूद्ध के औषधि अभाव फुलवा। औषधि अभाव फुलपा से यहां के अधिकांश संस्थान में सर्पदंश के ब्रह्मकरण के उपचार में समस्या हुई थी। प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य संस्थान में फिर औषधि अभाव रहल बाकर से सुदूरपश्चिम प्रदेश के स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र में अलग औषधि के मौजदात फिर घटती गये बताया गया। सुदूरपश्चिम प्रदेश में सर्पदंश के उपचार के लग प्रयोग बिना एंटी स्नेक वेनम अर्थात विष विरूद्ध के औषधि अभाव से प्रदेश के तमाम स्वास्थ्य संस्थान में समेत एक समस्या हुई। सुदूरपश्चिम प्रदेश के स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र में अलग मौजदात फिर समेत 6 महीना आगे नई स्वास्थ्य मंत्रालय में समेत आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र में 500 भाइल औषधि समेत लाने रह कलसे ऊ औषधि पहले नई ओरायलो ओकर पाछे प्रदेश के तमाम जिला अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थान में मौजदार रहल संकलन करल और लानल औषधि फे समेत अब ओरागिल बटाइल बा। पहले समेत लानगिल फे औषधि ओरायल पासे संकलन करलक औषधि फे ओरैना अवस्था में पुगल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र में अब 70 थो समेत भाइल औषधि मौजदात रहल बा। कलसे प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र के समेत कोल्ड स्टोर में समेत रहलक असिस्टेंट ट्विंकल कुंवर जानकारी दिले। कुंवर के अनुसार अब दैनिक जैसिन सर्पदंश हुई रला कोर से औषधि अभाव हुई एक जहन सर्पदंश के बेरे में हुकरण कमती में फे 10 भाइल आवश्यक पर्न रला कोर से अब फे मौदात केन्द्र में 70 भाइल औषधि केल ओराई सेकना देख गेल बा। सर्पदंश के कारण से विश्व वृद्ध के औषधि खरीद करना नहीं मिलना सीधे समेत केन्द्र मन से ऐना रले कोर से

0: यहाँ आपूर्तिमा समस्या होइत रहल बा। एक अलग संघे मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा विभाग में खबर कर सकालो अब 15 दिन में औषधि आपूर्ति होना आश्वासन करल असिस्टेन्ट कुंवर के कहेबा। ई 15 दिन भीतर कहरू कोई व्यक्ति है सपुआ से कटल से समस्या देख गिल असिस्टेन्ट कुंवर के कहेबा। टीकापुर अस्पताल में फे सर्पदंश के औषधि अभाव रहल बा। टीकापुर अस्पताल में 40 भायल केल औषधि मौजूद रहलो। ई 40 भायल चार्ज हने केल प्राथमिक उपचार कर सकना पुगनाओ। यही से ढेर बेरे में आईले से समस्या होना देख पड़ल। टीकापुर अस्पताल खोप शाखा के प्रमुख मोहन सिंह साउत की कहे बा। ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजोग प्रशिक्षण केन्द्र टीकापुर भदौ 7 गते रक्तदान कार्यक्रम आयोजना करनबा। समाज सेवा के प्रभाव से समेत प्रभाव के आयोजना समाज सेवा प्रभाग के आयोजनामा ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय के समन्वयमा ज्ञान योग र पवित्र के भावना के साथ रक्तदान अमूल्य जीवनदान बसैना केल नै हो के जीवनमा आशा प्रेम करूणा उजरार फैलिना सन्देश समेत लेना राजयोग गिनी दिदी प्रकाशमणि पुण्य स्मृति रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्न लागि लेखो। भदौ 5 से लैके 9 गतेसम्म नेपाल और भारत के ब्रह्मकुमारी केन्द्रमा एकै साथ रगत संकलन करती रहलबा। गैल वर्ष फे देशभर रक्तदान करगिल। यही वर्ष फे वृहत रूपमा टीकापुर दुर्गौली लगायत के सबको शाखामा रक्तदान गर्न लागिल। ब्रह्मकुमारी सीता तिमेल सेना जानकारी दिले बाटै ओस्तगर टीकापुरमा 90 पिण्ड रगत संकलन हुन्बा। आमा के प्रेम सारा संसारमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय बिलिभ यू फाउन्डेशन के आयोजनामा करलक रक्तदान कार्यक्रममा उरगत संकलन हुइलेखो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी टीकापुर उपशाखा के प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान हुइलेखो। खोजखरमा एक घड़ी विश्राम पासे फेर से सुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली को अत्यंत जरूरी सूचना। व्यावसायिक रूप में केरा खेती गर्न चाहने कृषकहरूलाई लागत साझेदारी सहयोग कार्यक्रम रहेकाले आयोजनासँग साझेदारी गर्नको लागि रितपूर्वक भरिएको माग आवेदन प्रस्ताव आयोजनाको कार्यालय टीकापुर वा सम्पर्क कार्यालय सुखड कैलालीमा भदौ 5 गते भित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नुहुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। थप जानकारी चाहिएमा आयोजनाको फेसबुक पेज रानी जमरा कुलरिया वा वेबसाइट वा सम्पर्क नम्बर 091551414 091551414 वा कार्यालयमै सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई टीकापुर कैलाली।
2: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ, फेरि खानै पर्छ।
3: तपाईँ एक्लो कहाँ छ श्रेया, त्यति माया गर्ने आमा छिन्, दिदी छिन्, भाइ छ, बरु एक्लो त म छु। म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे, कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ, बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ।
2: हो र, तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र, त्यसो भन्छ
3: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त, जब म निस्केँ काम गर्न थाले अनि पो कमाइ छ त। यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन, हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो, अब घरजम गर्नु छ, श्रीमती छोराछोरी होलान् उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म।
2: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिछ जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
4: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: टीकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
5: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
1: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर। भागीरथी मेडिकल टीकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग मिर्गी रोग तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई भेष हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
0: विश्राम पासी फिर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री खगराज भट्ट सार्वजनिक सेवा प्रवाह में चुस्त प्रभावकारी नागरिक मैत्री बनाईना निर्देशन देलेबाट मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के ब्रीफिंग लेती मुख्यमंत्री भट्ट से कार्यालय समेत स्मार्ट प्रविधि मैत्रियों समेत परिणाममुखी बनैती प्रदेश के सक्कु मंत्रालय तथा निकाय हुकन बीच प्रभावकारी समन्वय अनुगमन कर पर्ना बटवागिल्बा नागरिकन के सहायता और हाली सेवा पैना वातावरण निर्माण कर पर्ना में जोड़ देती वहां विकास रोजगारी शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता में जोड़ के योजनाबद्ध रूप में काम करना निर्देशन देले बाट मुख्यमंत्री भट्ट प्रदेश के गौरव के आयोजना हो रणनीतिक कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन में विशेष ध्यान देना कर्मचारी आग्रह करले बाट वहां कर्मचारी से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से काम कार्यपन्नमा जोर देले बाट ब्रीफिंग के क्रम में प्रमुख सचिव से समेत मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के संगठन संरचना कार्यक्षेत्र जिम्मेवारी हालसम के कार्य संपादन के बारे में मुख्यमंत्री भट्ट है जानकारी करेले रहें। कैलाली में जापानीज इंसेफलाइटिस में 7 जन संक्रमण पुष्टि करबा इन्सेफलाइटिस से संक्रमण पुष्टि हुलक धनगढ़ी 3 घोड़ाघोड़ी 2 लमकी 2 जाने रहल बटागिल्बा स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली के प्रमुख रमेश कुमार के अनुसार कैलाली में जापानीज इन्सेफलाइटिस के जोखिम रलको अब 7 जन में संक्रमण पुष्टि हुई रलक ओर से सतर्कता अपनाइना आवश्यक रहलबा। नेपालमा कार्तिक महिनासम्म जापानीज इन्सेफलाइटिस अर्थात मस्तिष्क ज्वरो के समेत संक्रमण उच्च हुन जोखिम रहलबा। संक्रमित क्याप्सुल जात के समेत लामखुट्टे के टोकाई से पर्न यी रोग से समय में पहचान उपचार नहीं करने से मस्तिष्क में समेत सोईना पक्षघात अवस्था का कोमा में जैना हो मृत्यु हुन समकै अवस्था ऐतिरलक चिकित्सक हुक्रा बताएल बाट संक्रमित हुक्रा खास करके सुंगुर बुंगुर बख्ती उसका बकला घोड़ा और जंगली जनावर के से कटो पाइल से वायरस समेत बोकलक रहत हो ई पश्चात मनैन्हे कटला से संक्रमण फैलती रहत। सुदूरपश्चिम प्रदेश में अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग से करीब 13 महीना पासे स्ट्रिंग ऑपरेशन संचालन करती घुस रहित एक जहान है पकड़ाव करलबा। अख्तियार कंचनपुर स्थित के कार्यालय कैलाली के गौरी गंगा नगर पालिका 4 में रलक कालिका माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति के सदस्य देव बहादुर बमे विभिन्न दिन की 2 लाख रूपया नगद सहित पकड़ाव करल के हो। अख्तियार कंचनपुर के प्रवक्ता चेतराज भट्ट के अनुसार विद्यालय में कार्यरत कर्मचारी से असुविधा वृद्धि कर देना प्रलोभन देखी बम से रकम मांग करलक सूचना प्राप्त हो पासे आयोग से स्ट्रिंग ऑपरेशन संचालन करल रह। उक्रम में वहां है धनगढ़ी 1 मरलाक 1 डेरी पसल मान्छे रकम सहित नियन्त्रणमा लिएको हो। खोज खबरमा फेन्से विश्राम विश्राम पाछे फेर्सै विश्वतिर विश्रामदायक रेडियो टिका एफएम।
6: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना।
7: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलिसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टिकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।
6: तपसिल
7: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र 1 प्रति फोटोकपी,
6: बैंकको सक्कल चेकबुक र 1 प्रति फोटोकपी,
7: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र,
6: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि, हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति,
7: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिना भित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र।
6: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला।
7: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
8: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
9: मैले जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नहीं निकल छु।
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417। विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। कैलाली के बर्दगोरिया गाउँपालिका 3 स्थित लालीगुरा सामुदायिक बनुवामा शिकार खेलना क्रम में भरुआ बंदूक के गोली लाग के 43 वर्ष के पदम बहादुर विश्वकर्मा के मौत हुई बा। प्रहरी से 2 जने पकड़ाव करल बा। भदौ 2 गते शिकार खेले जाने क्रम में कृष्ण बहादुर बुढ़ा जंगली बनेल हे समेत गोली मारबेर गोली विश्वकर्मा के दाहिन छाती में समेत लागल। प्रहरी से जनायल बा घायल विश्वकर्मा के उपचार के लैजिना क्रम में सड़कमा समेत मौत हुई रहा। मौत पाछे सब जंगलमा समेत लैजाके भागल। आरोपमा मृतक भैया गणेश विश्वकर्मा से समेत जाहिरी देहल रहे। जाहिरी के आधारमा कृष्ण बहादुर बुढ़ा क्षेत्रीय राकेश दंगौरा थारू हे प्रहरी से पकड़ाव करल के हो। ओ नेपाली कांग्रेस के केन्द्रीय अनुसन्धान समिति से बैठक बोलायल बा। समिति से शुक्रवार केलाक बैठक बोलागिल। सचिव दिनेश थापा मगर जानकारी दिलेबाट वहाँ के अनुसार बिहान के 11 बजे केन्द्रीय कार्यालय सनेपामा बैठक बैठीबा। समिति के बैठकमा एजेण्डा के बारे में भर कुछ नै खुलाइल हो। यह समाचार संगे खोज खबर वायल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सुरपश्चिममा सर्पदंश के उपचार के लग प्रयोग हुई एंटी स्नेक भेनम के अभाव भूके औषधि अभाव से उपचार में समस्या हुई थी। कैलाली में जापानीज इन्सेफेलाइटिस से 7 जने संक्रमित। लामखुट्टे के टोकाई से बचना उपाय लगाई पर्नामा जोड़। टीकापुरमा नब्बे पेन्ट रगत संकलन प्रमुख कुमार ईश्वरी विश्वविद्यालय राजोग प्रशिक्षण केन्द्र भदौ सात गते रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गर्न ओ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाइपर्न मुख्यमन्त्री भट्टराईको निर्देशन थारू भाषा खोज खबर त्रै और समाचार 12 बजे मध्याह खबर सुन सकबी अबेकी खोज खबर से मई रतन चौधरी बिदा हुई सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुन्तिर विराम राम।

0: धरोहर थारवान आंदोलन का वीर शहीद अमर रहुन। समानता न्याय अधिकार का लागि एवं दासता विरुद्ध टीकापुर थरोहर थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष
1: आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के
0: टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 में सहभागी बनौ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे टीकापुरको भानुचोकको खुल्ला मैदानमा आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली। ओइ दीपा दीपा, टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ नै जाइठो का?
2: ए हो टो, टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ जाइक लग मै तो कब से तयार बाटु। टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मैकिल कहाँ, मई तो ढेरे संग रे हूँ कहाँ लैके जाइक लग बाटू जे तू नाई जाइ ठोका।
0: मई फे जाइ तू, मई फे तो हारे हाँ ढेरे संग रे लेके जाइ तू।
2: ले तो ले सबको जाने वहीं भेट अपना, ओ कार्यक्रम ही सफल बना। हम तो जाइ थी अपने हूँ फेन जरूर आई बिना यह भाद्र 7 गते।
0: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना।
2: भजनी नगरपालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले कोर से स्वास्थ्य सेवा लेना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हुके मौका के फायदा ले से भी
0: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हुकर
2: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा
0: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा
2: जनरल फिजिशियन सेवा
0: जनरल सर्जरी सेवा
2: शिविर होना मिति 2083 भाद्र 7 गते आइतबार
0: स्थान महुन्याल मावि भजनी कैलाली
2: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम
0: भजनी नगरपालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कैलाली।
3: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
4: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि? ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
6: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
7: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: पेंसिल पैक किन लिते जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
1: कैश फिर तक ले लिते
0: एंसिल पैक किन लिते शर्त लागू हुई एंसिल नेपाल के लग
2: जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालयको अनुरोध जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडावासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सड़क किनारमा पशु चौपाया नबान्न र सड़क किनारमा मल वस्तु नथुपार्न अनुरोध गर्दछौ साथै सड़क किनारमा पशु चौपाया बाँधेर ढुङ्गा बालुवा माटो ग्राभेल मल थुपारेर दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवारी थुपार्ने व्यक्तिले लिनुपर्नेछ जानकी गाउँपालिका 3 नम्बर वाडा कार्यालय लायकपुर

राम राम समुन्नत समाज के लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज खोल के बैठल सकु रेडियो प्रेमी मैगर संग्रहण स्वागत के संगे अभिवादन करना चाह मई चांद मोरी बोल अपने के संगे पुगैटे संघरिया आकाजी अनलाइन में www.tikapureFM.org tikapureFMF मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसार के कोई भी कोनो से सकुदाने संगसंगति कार्यक्रम गोचाली हो हरेक हप्ता के शुक्रवार के दिन सवा 10 बजे से करीब करीब 11 बजे सम्म हम संगे हुई न करते वास्ते संगसंगे हुई आप गलाटी लाइन खुला कर सकलाटी संग रुके 091-561-255 के नगर खुला कर लाटी लाइन में बिल्कुल अपन सहभागी जना देवी मैगर अर्जी करना चाहम अपने के संगे भावना रुचि सुने न कार्यक्रम गोचाली रेडियो मार्फत चिंजान कर कार्यक्रम गोचाली अपन अपन रानी वानी मेल खेना संग्रहण के संगे भावनात्मक संबंध जोड़े चाहिए संग्रह के चाहे अपने के ना देवी मैगर जानकारी करना चाहम अपने के संगे वो संग्रह के अभी के समय में कहा करती आती जनेंगती घूमती आती फुर्सत के समय में बाटी काम धंधा में लागल बाटी की मजे हुई भी कुशल मंगल आराम हुई भी एक चोटी समय निकाल के उन्हें फिर साथ देख चाहे बिल्कुल ही ना भूले भी की मैगर जानकारी करना चाहम अपने के संगे मुने कार्यक्रम की शुरुआत करी हम एक गीत से

हजुरको कार्यक्रममा फेर से स्वागत गर्न चाहब अपने भर्खरै रेडियो खोलके बैठलमा दिगलेसे सुन्दीबाटी समुन्नत समाजके लग समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज सुन्दीबाटी अनलाइनमा www.tikapurfm.org टिकापुर एफएम एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसारके कोही भी कोनो से सको जाने हकके साथ हजी कार्यक्रम गोच्याली हो भई हरेक हप्ताको शुक्रबारको दिन सवा 10 बजे से करिब करिब करिब 11 बजेसम्म सबको जाने सँगसँगै हुई थी आज सबको जाने सँगसँगै बाटी लाइन खुल्ला बाबै सुने 91-561-255 के डगर खुल्ला बाबै आकाजी साथ डेट यादै साथ ढेकपन अपने हुन के पाला सुने 91-561-255 के डगर मार्फत सहभागी जना देवी मै गर जानकारी गर्न चाहम आओ सँगै सिक्टर सिक्टर सिक्टर मौसमके सँगसँगै निङ्टी घुम्तियाती फुर्सदके समयमे बाटी अपन अपन काम धन्दामे लागल बाटी कि मजै हेबी कुशल मंगल आराम हेबी एकचोटि समय निकालके भेलेसे फेर साथ देख चाहिँ बिल्कुलै ना भुलैबी हिमै गर अर्जी गर्न चाहम अपने हुकुमके सँगै यी कार्यक्रम अपने हुकुमके लग्न हो कार्यक्रम गोचाली तब मारे अपने मजा नेटवर्क हुल ठाउँ से साथ दिन प्रयास करबी पूरा बार बटवाके जा देबी औजाके सँगरे बनाके बिचमे सँगरे के सम्बन्ध चाहिँ ना टुर देबी मै गर जानकारी गर्न चाहम अपने हुकुमके सँगै लाइन खुल्ला बाबै 091-561-255 के डगर खुल्ला बाबै अथे पर हाम्रो फेर से एक ठो गिजोरी गीत के पाछे फेर से यह बाटी।

0: हजुर कार्यक्रममा फेरि स्वागत गर्न चाहब अपने हुक्रहन लाइन खुल्ला भाव शून्य 91.5 152 155 गीतगर खुल्ला भाव संग्रह गोचाली कार्यक्रम मार्फत अपन संघर्य हुक्रहन लावा संघर्य बनेकलग बनाएकलग जो आई अपने हुक्रहन के लग्न है कार्यक्रम गोचाली अपने हुक्रे अपन रानी बानी बटाई अपन अपन रानी बानी मेल खाना संग्रह के संगे चीन जान हुईना जो मन परल संग्रह यानी कि गोचाली कार्यक्रम मार्फत रेडियो मार्फत गोचाली के खोजी में बाटी संगरी के खोजी में बाटी के से अपन अपन भावना रुचि बताई पर्न रहत अपने टपमारे अपने आई सकती लाइन खुला भाव शून्य 91.5 162 155 के नगर खुला भाव मजा नेटवर्क से साथ देना प्रयास करी पूरा बार बटवा के जा देवी कहना चाह मई अपने रहन आकाश जी साथ दे टी आ के साथ दे अपन अपने के पाला हो टपमारे अपने निम्ति घुम्ती आती फुर्सद के समय में आती काम धंधा में लागल बाटी की मजे भी कुशल मंगल आरा में ही भी एक छुट्टी समय निकाल के लिए फिर साथ देख चाहे बिल्कुल ना भूले भी मैं जानकारी करना चाहम करूँ चटकार झटकार घाम करूँ शीतर मौसम अपने हुकन के गांव ठाव में हुई शायद लागत ये मौसम के संग संगे बिल्कुल अपने हुकरे अपन अपन काम लंग लागल हुई भी फुर्सत के समय में हुई भी जहां दोनों अवस्था में भी एक छुट्टी समय निकाल के लिए फिर साथ देख चाहे ना भूले भी लव रहे लौंडी चाहे कोई संग फिर अपन सहभागी जनाई शक्ति करना अपने को मई का जानकारी करना चाहम संघरे संघरे के खोज में रह संघरे के आ देवी मई का जानकारी करना चाहम अपने फोन कर भी कल से मजा नेटवर्क को हेल्थ से साथ देना कोशिश कर भी मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला भाव सुने 91.5 162 155 के नगर खुला भाव जानकारी करना चाहम अपने के संगे वो संघरे के अपन घर के आसपास के सर सफाई में बिल्कुल ही ध्यान देवी आजकल सावन भादों के महीना तब मारे अपने के मस्त मस्त दस के समय हो गई जाके खाल्डा खुल्डी हुई अपन घर के आंजा पांजा के लिए पूरा करना कोशिश कर भी पानी जमे ना देवी झार पाठी के लिए उखर भी करना चाहम आओ जाके अपने के बेरी जून यानी कि रात के नेंगे परगिल गले से अपने के टॉर्च लाइट और लट्ठी के प्रयोग करके नेंग नजर बानी बैठे भी अपने फिर सुरक्षित रही अपन घर परिवार हुकन फिर सुरक्षित बनाए और बनी करना अपने मई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला बाबा अठे पर हमने फिर से एक गीत जोरी गीत के पास हमने फिर से यह बाटी कौन संग्रह लाइन में आप गला कौन संकेत मिलल बा कहाँ से कौन संग्रह थे वहां बोल करना बिल्कुल हमारे आटू राती अपने फिर आई सक थी लाइन खुला बाबा कोई संग्रह लाइन में आया थे हजू राम राम हजू राम राम
1: राम राम
0: कहाँ से के कर बोल सुन ली हमरे
1: बर्दिया राजापुर के सुशांत चौधरी
0: सुशांत चौधरी बर्दिया राजापुर तीन के संघरिया
1: मजे बाटी
0: कैसे के दिन बिती भाई आजकल सुशांत जी के ना
1: हो घर काम पे क्या का कॉल डाटा
0: घर के काम धंधा करके बिती भाई शुरू कर सकते भावना रुचि
1: भावना कर से अपन से छोट मन माया करना अपन से भारी मन आदर सम्मान करना फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना नए नए ठाव में घूमना और जान भाटी बात नहीं करना दोनों पर दूर होना फुटबॉल डाटा
0: अपने के भावना और रुचि कोनो संघर्या होकरन मन पर अठी कल से अपने के अपने हैं संघर्य के रूप में कैसी के भेटाई सक जाए थोड़े सकते
1: 98-14-51-51-50 राजापुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 सुशांत चौधरी
0: आई ठर थे का संपर्क नंबर में अपने एकदम सहज से भेटाई सक जाए समझे सकती संघर है उपरन
1: टेक्निकल लैडर
0: है अब एक लग विदा है राम राम सुशांत जी रही बर्दिये के संगरे रही ढेर धन्यवाद देना चाहब सहभागी के लग रेडियो प्रेमी संगरे हो नियमित संगरे हो यदि वहां के भावना और रुचि अपने मन पर थी वहां संगे संगरे बनाईना जो अपने इच्छा हुई कले से राजापुर नगर पालिका 3 सुशांत चौधरी यही ठेकाना में वस्ते के 98-14-51-51-50 और ये मोबाइल नंबर में थे एकदम सहज से वहां है भेटाई शिक्षित संघर के रूप में करना अपने हुकन में मई का जानकारी करना चाहम आपके पाला में अपने हुकन के फोन से बिल्कुल सफल हुई से की आई शिक्षित 91.5 162 155 डगर मार्फत सहभागी जनाइसक ठिकाना अपने मैगर जानकारी गर्न चाहम मजा नेटवर्क होल ठाउँ से साथ लेने प्रयास करबी पूरा बादल रोके जा देवी लाइन खुला बाबई अठे पर हमें एक ठो गीत जोरी गीत के बाद से हमें फिर से ये बात ही

हजुर कार्यक्रममा फेर चाहिँ स्वागत गर्न चाहब अपने हुक रहन लाइन खुल्ला भावै 091-5161255 केदगर खुल्ला भावै कार्यक्रमको उच्चालीमा सहभागी जनाएक लगाई शिक्षी लाइन मार्फत सहभागी जनाए शिक्षिकन अपने मै गर अर्जी बाबै आकाजी साथ रेडिया तै मै चाँद के पार अनलाइन www.tikapurfm.org tikapurfm एप्स मार्फत हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मार्फत संसारकै कोही भी कोना से एकै साथ बाटी हो वह ठाउँ से थे अपने हुक अपन सहभागी से जनाई शेख भी गर्न अपने हुकनमै मै गर जानकारी गर्न चाहम 091-5161255 केटागर मार्फत सहभागी जनाए शिक्षी लौरा लौन्डी चाहिँ कोही सङ्घहरू आई शिक्षी यानी कि गोचाली कार्यक्रम मार्फत गोचाली बनेकलक बनाएकलक गोचाली के खोजी में रहल सङ्घहरू चाहिँ अपने हुक आई शिक्षी यी मैग जानकारी गर्न चाहम अपने हुकनके सँगै नेङ्की घुम्टी आटी फुर्सद के समय में आटी काम धन्दा में लागल बाटी जहाँ दौन अवस्था में हिबी रेडियो टीका आपुर एफएम 101 मेगा हर्ज जरूर फिर सुनती हुई भी व नईती हुई भी या वह ठाव से थे अपन सहभागी जनाई सक भी अपने नई का जानकारी करना चाहम लाइन खुला भावे 091-5161255 के दगर खुला भावे गोचाली कार्यक्रम हो गई हरेक हफ्ता के शुक्रवार के दिन 10:15 से करीब करीब करीब 11:00 सम्म अपने उनके संगसंगे हुई थी वे संगसंगे बाटी सकू जाने इमय का जानकारी करना चाहम निर्धारित समय फिर बिल्कुल कति लागल अवस्था में हम या पुगलाटी करना संगीत मिलन भावे अतः पटेल सम रेडियो नाके साथ दिल्ली रेडियो प्रेमी मैगर सङ्घहरूलाई धेरै धन्यवाद सहभागी जनाए सङ्घहरूलाई धेरै धन्यवाद कोनो सङ्घले सहभागी जनाइन प्रयास गरल हुई इन दिन अपने फोन बिल्कुल ही सफल हुई अपने फिर ढेर धन्यवाद और मुरिक बोल अपने के रेडियो सेट समय पुगा दिले को संघरिया आकाश जी है फे विशेष धन्यवाद देती एक सौ गीत छोटी मई कार्यक्रम संचालक चांद के पारे खपरा के लग भी रहे अपने इनके पल शुभ रहे राम राम।

0: लिटे सर लागू हुई एनसेल नेपाल के लग
1: थरुहत थारवान आंदोलन का वीर शहीदहरु अमर रहुन। समानता न्याय अधिकार का लागि एवं दासता विरुद्ध टीकापुर थरुहत थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष
2: आदिवासी थारु हमारे धरती पुत्र तराई के
1: टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 मा सहभागी बनौ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे टीकापुरको भानुचोकको खुल्ला मैदानमा आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली ओइ दीपा दीपा टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई नै जाइठो का
3: ए हो टो टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मै टो कब से तयार बाटु टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मई किल कहाँ मई टो ढेरे संगरे हुकरा लेके जाइक लग बाटु जे तू नाई जाइठो का
1: मई के जाइठो मई के तोहारे ढेरे संगरे लेके जाइठो
3: ले टो ले सबको जाने वहीं भेट अपना ओ कार्यक्रम ही सफल बना हम भी तो जाइती अपने मुख्य फैन जरूर है बिना यह भाद्र 7 गते

0: बुका पिएर कभी पेन्सिल कबू झनै फटाका आजी का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गतिलो ठाउँसे झोला आनला से लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम तो
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रथ गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभाको सूचना टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाको 10 वार्षिक साधारण सभा तपसिलको मिति समय र स्थानमा हुने भएकाले सम्पूर्ण ब्लक टोल संयोजकहरू प्रतिनिधिहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू पत्रकार तथा सरोकारवाला सबैलाई पत्रचार गरिसकेको छ कुनै कारणवश पत्र नपुगेको भए यसै सूचनालाई आधार मानि उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ साधारण सभा हुने मिति 2083 भदौ 6 गते शनिबार समय बिहान 11 बजे स्थान टीकापुर योग आश्रम हल ब्लक नम्बर 18 टीकापुर साना शहरी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था कैलाली
1: बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाई वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाए
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरे शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक
1: स्वास्थ्यश्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्यश्री
0: रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू
2: धरोहर थारवान आन्दोलनका वीर शहीदहरू अमर रहुन्। समानता न्याय अधिकारका लागि एवं दासता विरुद्ध टिकापुर धरोहर थारवान विद्रोह दिवसको 11 वर्ष टिकापुर विद्रोह दिवस 2083 मा सहभागी बनौ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे टिकापुरको भानुचोकको खुल्ला मैदानमा आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली। ओइ दिपा दिपा टिकापुर विद्रोह दिवस मनाइ नै जाइठो का?
3: ए हो तो टिकापुर विद्रोह दिवस मनाइ जाइक लग मै तो कब से तैयार बाटू। टिकापुर विद्रोह दिवस मनाइ जाइक लग मै किल कहाँ मै तो ढेरे संगरे हूँ रहा लेके जाइक लग बाटू जे तू नाइ जाइठो का?
2: मै के जाइटू मै के तो हार यहाँ ढेरे संगरे लेके जाइटू।
3: ले तो ले सबको जाने वहाँ भेट अपना ओ कार्यक्रम ही सफल बना। जाइटी अपने उम्र फेन जरूर है बिना यह भाद्र 7 गते।
2: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना।
3: भजनी नगर पालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले कोर से स्वास्थ्य सेवा लेना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हुके मौका के फायदा ले सकदी।
2: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हुकरा
3: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा
2: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा
3: जनरल फिजिशियन सेवा
2: जनरल सर्जरी सेवा।
3: शिविर महिना मिति 2083 भाद्र 7 गते आइतबार।
2: स्थान महुन्याल माबी भजनी कैलाली।
3: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम्म।
2: भजनी नगर पालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कर...

0: थरोहर थारवान आन्दोलन का वीर शहीद अमर रहुन। समानता न्याय अधिकार का लागी एवं दासता विरुद्ध टीकापुर थरोहर थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष
1: आदिवासी धरती पुत्र
0: टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 मा सहभागी बनौ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे टीकापुरको भानुचोकको खुल्ला मैदानमा आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली। ओए दीपा दीपा टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई नै जाइठो का?
2: ए हो तो टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मैं तो कब से तैयार बाटु। टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मई किल कहाँ मई तो ढेरे संगरे हूँ कहाँ लैके जाइक लग बाटु जे तू नहीं जाइठो का?
0: मई के जाइठू मई के तो हार ढेरे संगरे लेके जाइठू।
2: लेव तो लेव सबको जाने वहाँ भेट अपना ओ कार्यक्रम ही सफल बना। हमरे तो जाइटी अपने मुझे फैन जरूर आई बिना यह भाद्र 7 गते।

0: के कब्बू का पी रही था, कब्बू पेंसिल रही था, कब्बू झोले फटा का आज था, का कना हो बाबा के ओस्टा बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा एक में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कब्बू लड़का कभी हेरा कई था, कब्बू पेंसिल हेरा कई था, कब्बू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी, ना कब्बू लड़का कहाँ पी रही थी, ना कब्बू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: का पिए रही था कभी पेंसिले रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर होस्ट बाटिन गतिलो ठाउ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरा भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाउ से झोला लाना नहीं चिक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठी
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: हेलो
1: हेलो,
0: मजा बाटो?
1: हाँ ठीक है बा, आठ दिन का है नहीं लौटा।
0: मोर ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रहा तब आई नहीं पैनू मई तो जल्दी आइकला रहू। एक ठो खुशी बाट बा, काल आई तू मई तब भेटब मजा से।
1: काल

0: कार्यक्रम मझेरी
1: मझेरी मझेरी।
2: भैया ना करा रेडू बिगरी
3: नहीं का मम्मी टीकापुर एफएम से मझेरी कार्यक्रम एक लगबा का
0: थारू गीत के बहार प्रतिभा अनेक अपने के मन में जोन प्रतिभा आयता वो प्रतिभा सुनाए लग आई कोई गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर कोई भी नेतन के कैरिकेचर चिड़ै चुरुंगर जानवर के आवाज कोई भी चीज कोई प्रतिभा अपने में बा कल सुनाए लग हम फोन करी साता के बिहार दिन के 1 बजे से 1:45 बजे हम 091-561-255 में डायल करे ना भूलेगी केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज में कार्यक्रम मझेरी मई मिशन के साथ में सुने ना भूलेगी।
4: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछ छोरी?
5: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
4: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले
5: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सकियो नि।
4: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
5: न्यू अछाम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
6: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स सिद्धार्थ चोक टीकापुर, न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइन का विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टीकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98-688-14-799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25।

0: धरोहर थारवान आंदोलन का वीर शहीदहरू अमर रहुन्। समानता न्याय अधिकार का लागि एवं दासता विरुद्ध टीकापुर थरोहर थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष
1: आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के
0: टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 में सहभागी बनाओ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे टीकापुरको भानुचोकको खुल्ला मैदानमा आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली ओइ दीपा दीपा टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ नै जाइठो का?
2: ए हो तो टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ जाइक ल मै तो कबसे तयार बाटु। टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मैकिल कहा मई तो ढेरे संग रे हुकरा लेके जाइक लग बाटू जे तू नाई जाइ ठोका
0: मई के जाइ तू मई के तो हार है ढेरे संग रे लेके जाइ तू
2: ले तो ले सबको जाने वहीं भेट अपना ओ कार्यक्रम ही सफल बना। हम रे तो जाइ थी अपने हुकरे फेन जरूर रही बिना यह भाद्र 7 गते
3: विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रमा पूर्व कार्यरत गोल्ड मेडलिस्ट डाक्टर अब महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा।
4: डाक्टर अजय भट्ट मुटु रोग विशेषज्ञ MBBS MD इन्टरनल मेडिसिन DM कार्डियोलोजी।
5: डाक्टर आउने दिन यही भदौ 6 गते शनिबार समय बिहान 10 बजे देखि
4: महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
3: उपचार हुने समस्याहरू
4: हृदयघात हार्ट अट्याक उच्च रक्तचाप धड्कन अनियमितता मुटुमा दुखाइ वा जलन स्वास्थ्यमा गाह्रो भएको समस्या कोलेस्ट्रोल र मुटु सम्बन्धी समस्या हातखुट्टाहरू झमझमाउने मुटुको बाइपास सर्जरीको फलोअप एन्जियोग्राफी गरेका बिरामीहरूको फलोअप सुगर थाइराइड दम निमोनिया सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको समाधान
3: साथै मुटुको इको रगत जाँच र ECG पनि गरिन्छ। थप जानकारी तथा नाम दर्ताका लागि फोन नम्बर 98216-14306 र 98486-39785। सम्पर्क स्थान महापार्वती मेडिकल स्टोर जोशीपुर गाउँपालिका 2 जोशीपुर बजार कैलाली।

मिर्जापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: भजनी में स्वास्थ्य शिविर हुईना बारे के सूचना।
1: भजनी नगर पालिका के समन्वय नवजीवन सेवा संघ धनगढ़ी कैलाली के आयोजना ओ सौभाग्य अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर धनगढ़ी के विशेषज्ञ डाक्टर हुकरन से निःशुल्क विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर हुईना हुईले को से स्वास्थ्य सेवा देना चाहना महानुभाव हुकरे टोकल मिटी समय ओ स्थान में उपस्थित हुके मौका के फायदा ले सकी।
0: शिविर में पैना विशेषज्ञ सेवा हुकर
1: स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा,
0: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा,
1: जनरल फिजिशियन सेवा,
0: जनरल सर्जरी सेवा।
1: शिविर होना मिटी 2083 भाद्र 7 गते आइतबार।
0: स्थान महुन्याल माबी भजनी कैलाली।
1: समय बिहान के 9 बजे से 4 बजे सम।
0: भजनी नगर पालिका नगर कार्यपालिका के कार्यालय भजनी कैलाली।
2: भनदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
3: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
4: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
5: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
2: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
6: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतौल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
7: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
8: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
6: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164600204।
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम। टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ।
1: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
2: ओसीएमसी भनेको लैङ्गिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
1: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
2: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैङ्गिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैङ्गिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
3: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9854899213, इमेल ocmctikapur@gmail.com।
4: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
5: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
4: टिकापुर कैलाली,
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772।
8: स्वास्थ्यका लागि पानी।
9: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
10: मैं नहीं जाएं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
9: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
10: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
11: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
12: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: कितना ले लीते
1: एंसल पैक किन लीते
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी तो 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीते कैश फिर तक ले लीते
2: एंसल पैक किन लीते शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएमके संझे 5 बजे थारू भाषा खोज खबर में अपना कन स्वागत बा। खोज खबर से मई गीता चौधरी राम राम। अपनौक्रा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हम पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल सुदूरपश्चिम भ्रमण में आईटी हमार समुदाय में लागू औषध दुर्व्यसनी मुख्य सामाजिक समस्या के रूप में नफैलती नेपाल भारत खुला सीमा नाका से लागू औषध नियंत्रण में चुनौती ओ शिक्षा विधेयक लाग शिक्षा मंत्रालय 60 प्रदेश में सुझाव संकलन करती आप खोज खबर विस्तार हमार समाज में लागू औषध दुर्व्यसनी मुख्य सामाजिक समस्या के रूप में रहलक देख जाट एकर प्रयोग से समाज में नकारात्मक असर पड़ती रह नेपाल भारत खुला सीमा नाका के कारण नियंत्रण में चुनौती हुई तिरलक प्रहरी के कहाइबा हमार समाज में लागू औषध दुर्व्यसन मुख्य सामाजिक समस्या के रूप में रहल देख जाट हमार समाज गांव टोल समुदाय सबको उहर लागू औषध दुर्व्यसन के जालो फैलल बा यही मन छुट्टी लड़का प्रकार थे से लेकर युवा व वृद्धा हुक्रफे संलग्न रहलक देख गिलक टीकापुर नगरपालिका ओडा नंबर 1 ज्योति नगर के दीक्षा रावल बटुलबाट ज्योति नगर के मुकेश खटकाफे आपन गांव टोल में रहलक छुट्टी छुट्टी लड़का प्रका हुक्र लागू औषध दुर्व्यसनी में लगलक उहर से लगलग उहर से याकर मुख्य समस्या के रूप में रहलक बटुलबाट वहां कक्षा 5, 6, 8, 9 पढ़ना लड़का प्रका लागू औषध दुर्व्यसनी में फस्तीरलक उहर से इन यहां के मुख्य समस्या रहलक बटुलबाट शांति टोल विकास संस्था के सदस्य आशा चौधरी फे आपन समुदाय मन लागू औषध दुर्व्यसन ढ्यूर बहतीरलक बटुलबाट वहां आपन गांव टोल मन ढ्यूर लड़का पर्का हुक्र लागू औषध दुर्व्यसनी में फस्तीरलक उहर से यी विषय में सरकार ध्यान दिहेपना बटुलबाट।

यी विषयमा जिल्ला प्रशासन जिल्ला प्रहरी प्रशासन कार्यालय फे आफ्नो ओक्र स्याकलसम्म काम कटिरलक बटुलबाट समाजमा फैलिरलक लागू औषध दुर्व्यसनीय नियन्त्रण गर्न सवाल मन हमार समुदाय ओ प्रहरी प्रशासन एक औरजन जिम्मेवारी हुई पर्ना बटुटी ऐतिरलक डेगजेट प्रहरी प्रशासन हमार समाज शुद्ध परत कटिरहल बा कलसे समाज फे प्रहरी प्रशासन लागू औषध नियन्त्रणमा काम गर परत कैकन कटिरलक सुन्जेट तर लौ प्रविधिकै युगकेसँग परिवर्तनशील आवके हमार समाजमा देखजिना असिल सामाजिक समस्या समाधानकै लागि नागरिक अथवा समाज ओ प्रहरी प्रशासन दुनु जहनके ओत भूमिका रहलबा याकर लागि समाज ओ समुदाय आवके बनावट ओ वहाँके नागरिकके चेतना हन बुझकन काम कर सेकल सेकल हक लागू औषध दुर्व्यसनीय नियन्त्रण कर सेकजेट सेकजिना टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस के समाजशास्त्र के उप प्राध्यापक शिव चरण चौधरी बटुलबाट जे ज्याकलसेफे हमार समाज अथवा समुदाय लागू औषध दुर्व्यसनी के दलदलमा फस्तिरहलबा यी विषयमा एक और जहन दोष देखैना सेफे हाम्रो सक्कुज सचेत होकन स्वाचपना देखजाइट भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल कालथेसी सुदूरपश्चिम प्रदेशके विभिन्न जिल्लाके भ्रमण मन ऐटीबाट मन्त्री रावल कञ्चनपुर कैलाली डडेलधुरा लगायतके जिल्लामा पुग्क स्थानीय नागरिकके गुनासो सुन्न ओ मन्त्रालय से सम्बन्धित समस्या व विषयके बारेमा सरोकारवाला हुकनसे प्रत्यक्ष छलफल गर्न बटुलबाट भ्रमणके क्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय से सम्बन्धित जन गुनासो सुन्न कार्यक्रम रहलक उहाँ जानकारी दिएबाट संघ सहकारी क्षेत्रकै समस्या भूमिहीन तथा सुकुम्बासीकै समस्या ओ हुकनकै अवस्था बारे समेत सम्बन्धित नागरिक तथा सरोकारवाला हुकनसे भेटघाट ओ छलफल गर्न कार्यक्रम रहलबा मन्त्री रावलकै अनुसार भ्रमणकै क्रममा कुछ दिन सुदूरपश्चिममा रहकन स्थानीय नागरिककै समस्या ओ गुनासो प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नबा सुनुयाबाट उहाँ मन्त्रालय से सम्बन्धित विषयमा देखगिलक समस्या पहिचान गर्क समाधानकै लागि सम्बन्धित पक्षसे आवश्यक छलफल समेत गर्न बटुलबाट राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभासे सन्देश सहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा एन 2042 के साबिक व्यवस्था जगैना सम्बन्धी विधेयक 2083 उप विचार कैजाएकै प्रस्ताव सर्वसम्मत लेखन स्वीकृत करलबा राष्ट्रिय सभाकै आजकै बैठकमा सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ऊ प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत करलरह वाकर पाछा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकै उहर्से कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम विधेयक उप विचार कैजाएकै प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत करलरह राष्ट्रिय सभाकै औरो बैठक इहे भदौ 9 गते मंगलबार बिहान 11 बजे बैठुयाबा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेतृत्व कतिरलक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मन्त्री के टुङ्गो लगाइ निस्याकल पाछा 12 जना आकांक्षीके नाउँ पार्टी केन्द्रमा सिफारिश गर्लबा मन्त्री चयनके लागि नेकपा सुदूरपश्चिमके इन्चार्ज भानुभक्त जोशीके संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गर्लरह तर मन्त्री बन्न चाहना प्रदेश सभा सदस्यनकै संख्या ध्युर हुइल पाछ कार्यदल नाउँ टुङ्गो लगाइ स्याकल्नी हो इन्चार्ज जोशीकै अनुसार मन्त्री केलाक आकांक्षीकै संख्या ध्युर हुइल कोर्से कार्यदलकै निर्णय कर निषेगिलक बटुलबाट केन्द्रसे नाम टुङ्गो लगाइल पाछ प्रदेश सरकार विस्तार गर्न उहाँ बटुलबाट स्रोतकै अनुसार कार्यदल साबिक एकीकृत समाजवादीकै 2 जना नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै 3 जना ओ तत्कालीन माओवादी केन्द्रकै 7 कैकन 12 जहनके नाउँ केन्द्रमा पठागिल्बा सिफारिशमा साबिक एकीकृत माओवादी से प्रकाश रावल ओ नरेश शाहीबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से खुशीराम चौधरी कैलाश चौधरी ओ इन्दिरा गिरीके नाउँ पठागिल्बा उस्तकन तत्कालीन माओवादी केन्द्र से मानबहादुर धामी अक्कल रावल ओम विक्रम भाट छपत साउत शिवसिंह ओली जानकी पौडेल ओ लक्ष्मी विकके नाउँ केन्द्रमा सिफारिश गर्गिलक स्रोतसे जनागिल्बा एमालेकै समर्थनमा 29 साउनमा खगराज भट्ट सुदूरपश्चिम प्रदेशकै 5 मुख्यमन्त्री
मन्त्री मन नियुक्त हुइल रह नियुक्त हुइल दिन थेसे हुइलक दिन वहाँ एमाले के तीन मन्त्री व एक राज्य मन्त्री नियुक्त कल रह वाकरपा छ बुधबार वहाँ प्रदेश सभा से विश्वास के मत समेत लेल रह तर नेकपा भितर मन्त्री के टुंगो लगाई निस्याकबे सरकार

0: विस्तारमा कुछ ढिलाई हुई बा केन्द्रीय तीन मन्त्री वा दुई राज्य मन्त्रीकै नाउँ टुङ्गो लागल बा छ मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश सरकार विस्तार गर्न तयारी गर्लबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम विश्राम पाछैनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजेसम्म मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुइलकमा र बेरम्हे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध गरती। सत्कार पोलिक्लिनिक से देजैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल भिडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित अटो एनालाइजर से सक्कु रगत जाँच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हात जोड्नी सेवा टुटल हात जोड्नीमा प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जाँच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल तीन तह के सरकार मिलकर शिक्षा क्षेत्र के विकास के ला काम कर अपनामा जोड़ देलबाट। कैलाली के धनगरी में आज आयोजित शिक्षा क्षेत्र के नीति कार्यक्रम बजेट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया बारे प्रदेश और स्थानीय तह के सरोकार वाला हुकन के प्रदेश स्तरीय 3 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल सक्कू तह के समन्वय से शिक्षा मन सुधार सम्भव हुना बटुलबाट। मन्त्री पोखरेल कल प्रदेश और स्थानीय तह से सहकार्य नैकै शिक्षा क्षेत्र के काम प्रभावकारी रूप में सम्पादन करनी सेक्जै वहां शिक्षा नियमावली के 10 संशोधन व अन्य ऐन कानून से करगिलक व्यवस्था के परिपालना कर मिल का आघ पर बढ़पना बटुलबाट। शिक्षा ऐन नीति ओ कानून बनाई बेर सक्कू सरोकार हुइलक हुकन से धीर से धीर संवाद कर आवश्यक रहलक बटोईटी मंत्री पोखरेल संवाद से सक्कू समस्या के समाधान हुना विश्वास व्यक्त कलबाट। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के महानिर्देशक अंग प्रसाद न्यौपाने शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न नीति कानून निर्देशिका मापदण्ड व वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रदेश स्थानीय तह व शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बीच समान बुझाई कायम करना उद्देश्य लेकर अभिमुखीकरण कार्यक्रम के आयोजना करगिलक बटुलबाट। अभिमुखीकरण कार्यक्रम मन आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख प्रदेश ईडीसीओ ओ स्थानीय तह के शिक्षा कार्यक्रम के बारे में छलफल तथा अभिमुखीकरण करना समन्वय इकाई कैलाली के प्रमुख जीवन न्यौपाने जानकारी देलबाट। अभिमुखीकरण में शिक्षा नीति कार्यक्रम तथा बजेट सेक्टर वाइड एप्रोच अन्तर्गत के व्यवस्था ओ कार्यक्रम से जोड़ गिलक सूचक तथा बजेट निकासा बारे जानकारी देजिनाबा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा सचिवालय विस्तार कलबा शुक्रबार के केन्द्रीय समिति बैठक से सचिवालय विस्तार कर लखो। सचिवालयमा परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, संसदीय दलके उपनेता गणेश प्राजुली, पूर्व महामन्त्री कविन्द्र बोर्लाकोटी, ऊर्जा मन्त्री विराज भट्ट श्रेष्ठ, लिमा अधिकारी दीपक राज बोहरा, समीक्षा बास्कोता, शिव नेपाली, इन्दिरा राणा मगर ओ मनिष झा समेत गिलबाट। कञ्चनपुरमा विभिन्न मुद्दा मन चारजना फरहार प्रतिवादी पक्राउ परलबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय छलारी ओ इलाका प्रहरी कार्यालय गड्ढा चौकी से खटगिलक प्रहरी टोली अदालत से सजाई ओ जरिवाना तोगिल्पा छ। फरहार अलग चारजना प्रतिवादी हुकन नियन्त्रणमा लिएर खो। पक्राउ पर्नामा सवारी ज्यान मुद्दा मन 2073 जेठ 10 गते अदालतके फैसला से 2000 जरिवाना तोगिलक, लुस्थन राणा चेक अनादर मुद्दा मन 2081 पौष 1 गतेके फैसला से 1500 जरिवाना तोगिलक, कृष्ण दियाल विक काठ कटान मुद्दा मन 2076 पौष 12 गतेके फैसला अनुसार 1 महिना कैद ओ 2,63,600 जरिवाना तोगिलक, खेम बहादुर कडाल ओ लागू औसत मुद्दा मन 2083 वैशाख 15 गतेके फैसला अनुसार 6 वर्ष कैद सजाय तोगिलक, प्रेम सिंह ठकुना रहलबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरके सह प्रवक्ता तथा प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र सिंह थापा के अनुसार पक्राउ उपलक्ष्यको प्रतिवादी हुकन ह फैसला कार्यान्वयन के लाग जिल्ला अदालत कञ्चनपुर मन उपस्थित करागिल्बा। खोज खबरमा फेरफेर विश्राम, विश्राम पाछै निनिबाटी सुन्ति रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
5: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहीं हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट। आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई
6: कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली, प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 9848543426।
9: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार।
10: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फेमिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ।
9: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
10: दीर्घ रोगीहरू, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, थाइराइड, दम, सीओपीडी,
9: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा,
10: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार,
9: महिलाका समस्या, गायनोलोजिकल समस्या, गर्भावस्थाको जाँच,
10: सामान्य रोग, ज्वरो, खोकी, पेट दुखाई लगायतको उपचार,
9: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन,
10: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर।
10: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
9: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
0: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया थप सहभागितामूलक बनैती, प्रदेश वा तथा स्थानीय तहसे प्राप्त सुझावमा समेटना उद्देश्य लेके अभियान सञ्चालन करगिलक मन्त्रालय जनैलबा। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय विद्यालय शिक्षा विधेयक लन्नासे आघ सातो प्रदेशमा न सरोकारवाला हुकनसे छलफलकैक राय सुझाव संकलन गर्ना हुइल्बा। आइतबार से कोशी प्रदेश के विराटनगर से सुझाव संकलन के काम शुरू करगिलक मंत्रालय जनैलबा। विराटनगर स्थित आदर्श माध्यमिक विद्यालय मन कार्यक्रम कैगिलबा शिक्षा एन लन्ना स्याघ साठो प्रदेशमा पुगन शिक्षक विद्यार्थी प्रधानाध्यापक अभिभावक सहित शिक्षा क्षेत्रके सक्कु सरोकारवाला हुकनसे प्रत्यक्ष छलफल गर लागिलक शिक्षा मन्त्री समित पोखरेल के सचिवालयके सदस्य सरोज गौतम जनैलबाट उहाँके अनुसार शिक्षा संवाद अभियान अन्तर्गत कोशी प्रदेशके विराटनगर मधेशके जनकपुर बागमतीके हेटौडा गण्डकीके पोखरा लुम्बिनीके बुटोल कर्णालीके सुर्खेत ओ सुदूरपश्चिमके धनगरीमा कार्यक्रमके आयोजना गर्जैनाबा। कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेल सल्लाहकार शैलेन्द्र झा ओ विद्यालय महाशाखा प्रमुख सहसचिव शिवप्रसाद सापकोटा लगायत सहभागी हुइयाबाट कार्यक्रममा सहभागी हुकनसे राई सुझाव संकलनकना मन्त्रालय जनैलबा। शिक्षा ऐन निर्माणके प्रक्रियामा थप सहभागितामूलक बनैती प्रदेश तथा स्थानीय तहसे प्राप्त सुझावन नीति निर्माणमा समेट्न उद्देश्य लिएको अभियान सञ्चालन करगिलक मन्त्रालय जनैलबा। विराटनगरको कार्यक्रममा शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, शिक्षा अभियन्ता अभिषेक घिमिरे, प्रधानाध्यापक संघ नेपालकी अध्यक्ष सुदाम गौतम फेस सहभागीबाट शिक्षा मन्त्रालय आयोजक रहलक कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक संघ सहजीकरण गर्दै रहलबा। समाचार के संग खोज खबर ओराइल जेटी जेटी खबर के मुख्य शीर्षक फेर से भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल सुदूरपश्चिम भ्रमण में अटी हमार समुदाय में लागू औषध दुर्व्यसनी मुख्य सामाजिक समस्या के रूप में नफल्टी नेपाल भारत खुला सीमा नाका लेकन लागू औषध नियंत्रण में चुनौती ओ शिक्षा विधेयक लाग शिक्षा मंत्रालय सातों प्रदेश में सुझाव संकलन करते लिता आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार छ बजे खोज खबर सुन सेग्बी आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती मई गीता चौधरी फे विदा हेतु सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
11: जापानी इन्सेफलाइटिस रोग सम्बन्धी स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीको अत्यन्त जरूरी सूचना
12: जापानिज इन्सेफलाइटिस मस्तिष्कमा संक्रमण हुने लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने भाइरल रोग हो। यो रोग जुनसुकै उमेरका मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ तर धेरै जसो 15 वर्ष मुनिका बाल बालिकामा देखिन्छ।
13: यो भाइरसबाट संक्रमित हाँस कुखुरा जस्ता चरा चुरुङ्गी र सुँगुर बंगुर जस्ता जनावरहरूलाई लामखुट्टेले टोक्यो भने सो लामखुट्टे संक्रमित हुन्छ र ती संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमा यो रोग मानिसमा लाग्दछ। तर यो रोग मानिसबाट मानिसमा भनी सर्दैन। यो रोग विशेष गरी साउनदेखि कार्तिकसम्म देखिन्छ।
12: जापानिज इन्सेफलाइटिस रोगको लक्षण तथा चिन्हहरू
13: बेसरी टाउको दुख्ने,
12: उच्च ज्वरो आउने, बेहोस हुने,
13: घाँटी अरोरो कडा हुने,
12: कम्पन हुने,
13: पक्षघात हुने
12: र समयमा उपचार नभएमा बिरामीको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
13: जापानिज इन्सेफलाइटिसबाट बच्ने उपायहरू
12: लामखुट्टेको टोकाईबाट बस्नु नै यस रोगबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो।
13: हाँस कुखुरा सुँगुर बुङ्गुर जस्ता घर पालुवा चराचुरुङ्गी जनावरहरूलाई व्यवस्थित ढंगले घरदेखि टाढा खोरमा राखेर सुरक्षित तरिकाले पाल्ने गरौं।
12: घर बाहिर निस्कदा खेतबारीमा काम गर्दा पूरा बाहुला भएको कपडा लगाऊ।
13: घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्ने, पानी जम्ने ठाउँमा लामखुट्टे वृद्धि हुने भएकोले घर वरिपरि पानी जम्ने खाल्डा खुल्डी पूरी दिने गरौं।
12: लामखुट्टे भगाउने धूप वा मलम प्रयोग गरौं।
13: सधैं झुल टाँगेर सुत्ने गरौं।
12: याद गर्नुहोस् यो रोगबाट बस्नका लागि 12 महिनाको उमेरमा जेई खोप लगाउनु पर्छ। यदि यो खोप लिन छुटेको छ भने 5 वर्षको उमेरसम्म पनि जेई खोप लगाउनु पर्दछ।
14: स्वास्थ्य कार्यालय कैलाली।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जार सेकल।
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
4: मिस्तरान बर्जना उकना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना उट्र फे पटानी हुई की गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
7: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
8: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरकी उपार, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नम्बर 9848513426।

0: थरुहर थारवान आंदोलन का वीर शहीद अमर रहुन। समानता न्याय अधिकार का लागी एवं दासता विरुद्ध टीकापुर थरुहर थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 में सहभागी बनौ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे
1: टीकापुरको गुरही चोकको खुल्ला मैदानमा
0: आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली। ओए दीपा दीपा टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई नै जाइठो का?
1: ए हो तो टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मैं तो कब से तैयार बाटू। टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मैं किल कहाँ मैं तो ढेरे संगरे हूँ रहा लेके जाइक लग बाटू जे तू नहीं जाइठो का?
0: मैं के जाइटू मैं के तुहार तो ढेरे संगरे लेके जाइटू
1: ले तो ले सबको जाने वहाँ भेट अपना ओ कार्यक्रम।

0: लिटे
1: एंसल पैक किन लिटे
2: जहिया फेन जहां फेन पैक खरीद करी 20% कम कैश फिर तक एंसल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लिटे कैश फिर तक ले लिटे
2: एंसल पैक किन लिटे शर्त लागू हुई एंसल नेपाल के लग
3: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्राली टीकापुर में
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा
4: ईसीजी सेवा
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
3: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-42-73-59 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै
5: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
6: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ
5: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर
7: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल
8: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो नि करत का कैना हो का
7: मिस्तरान बर्जनाउक न घर हेरो न अट्टा सुगुर बनैल बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुरा घुम जाए त थाहा पाए
9: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
8: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-51-43-26

0: ले लीजिए
1: एंसिल पैक किन लीजिए
2: जहिया फेन जहाँ फेन पैक खरीद करी ओ 20% कम कैश फिर तक एंसिल ऐप में क्लेम करी
0: कैश फिर तक ले लीजिए कैश फिर तक ले लीजिए
2: एंसिल पैक किन लीजिए सर लागू हुई एंसिल नेपाल के लग।

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू
1: धरोहर थारवान आन्दोलन का वीर शहीदहरू अमर रहुन्। समानता न्याय अधिकार का लागि एवं दासता विरुद्ध टीकापुर थरहट थारवान विद्रोह दिवस को 11 वर्ष
2: आदिवासी थारू हमारे धरती पुत्र तराई के
1: टीकापुर विद्रोह दिवस 2083 मा सहभागी बनौ। मिति 2083 भदौ 7 गते दिउँसो 11 बजे
3: टीकापुरको गुरही चोकको खुल्ला मैदानमा
1: आयोजक थारू कल्याणकारिणी क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 1 कैलाली ओइ दीपा दीपा टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ नै जाइठो का
3: ए हो तो टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइ जाइक लग मै तो कब से तैयार बाटु टीकापुर विद्रोह दिवस मनाई जाइक लग मई किल कहाँ मई तो ढेरे संगरे हुआ लैके जाइक लग बाटू दे तू नाई जाइ ठोका
1: मई के जाइ तू मई के तुहार यहाँ ढेरे संगरे लेके जाइ तू
3: ले तो ले सबको जाने वहीं भेट अपना ओ कार्यक्रम ही सफल बना
2: हम
3: भी तो जाइती अपने मुख्य फैन जरूर बिना यह भाद्र 7 गटे